0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Time check. Solu FM is studio time.
4: It's 7 a.m. Bihana ko 7 baje.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुदकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: क्रिकेट पांडा मैराथन को मिति परिवर्तन संबंधी सूचना। गत 2026 अगस्त 20 में आयोग विनाशकारी बाढ़ी पोहरो ठूल जनधन को क्षतिप्रति हमी गहिरो शोक सोही राष्ट्रीय विपत्ति को गुजीलाई गंभीरतापूर्वक ध्यान दी उक्त मैराथन को मिति सारे हो। इस कठिन परिस्थिति में हम कार्यक्रम प्रति देखा अतीत सहयोग विश्वास को हमी संपूर्ण सहभागी प्रायोजक स्थानीय समुदाय तथा आम दर्शक हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाह। नया मिति में इस मैराथन भव्य र सफलतापूर्वक संपन्न कर हमी थप सहयोग सूचना तथा शुभकामना प्रदान कर हार्दिक आग्रह करद। रेड पांडा नेटवर्क संघ को सहकार में इस आयोजक समिति ने आगामी 2026 सेप्टेम्बर 5 में आयोजना करने बने रेड पांडा मैराथन को मिति परिवर्तन करी 2026 नोवेम्बर 28 में आयोजना करने निर्णय विहरा संबंधित सभी में जानकारी कराई।
1: दशौं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता अन्तर्गत जिल्ला छनौटका लागि खेलाड़ी फारम भर्ने सम्बन्धी जिल्ला खेलकूद विकास समिति सोलुखुम्बुको सूचना।
0: प्रदेश स्तरीय प्रतियोगितामा सहभागी हुने सोलुखुम्बु जिल्लाका सम्पूर्ण खेलका खेलाड़ीहरूले जिल्ला खेलकूद विकास समितिबाट फारमले यही असोज 19 गते सम्ममा फारम बुझाई सक्नुहुन यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
1: आवश्यक कागजातहरू नागरिकताको प्रतिलिपि वा जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि,
0: अन्य जिल्लाको नागरिकता हुनेले बसाई सराईको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि र हालसाली खिचीको पासपोर्ट साइजको फोटो 2 प्रति।
1: थप जानकारी का लागि सम्पर्क नम्बर 98-63-91-91-55, उपाध्यक्ष 98-49-51-10-79, कार्यालय प्रमुख 98-49-921-56 र कार्यालय सहयोगी 98-62-86-72-57।
0: जिल्ला खेलकुद विकास समिति सोलुखुम्बु। रेड पांडा मैराथन को मिति परिवर्तन संबंधी सूचना। गत 2026 अगस्त 20 में आयोग विनाशकारी बाढ़ी पोहरो ठूल जनधन को क्षतिप्रति हमी गहिरो शोक सोही राष्ट्रीय विपत्ति को गुजीलाई गंभीरतापूर्वक ध्यान दी उक्त मैराथन को मिति सारे हो। इस कठिन परिस्थिति में हम कार्यक्रम प्रति देखा अतीत सहयोग विश्वास को हमी संपूर्ण सहभागी प्रायोजक स्थानीय समुदाय तथा आम दर्शक हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाह। नया मिति में इस मैराथन भव्य र सफलतापूर्वक संपन्न हामीले थप सहयोग सूचना तथा शुभकामना प्रदान गरिदिनुहोला भनी हार्दिक आग्रह गर्दछौ। रेड पांडा नेटवर्क संघको सहकार्यमा यस आयोजक समितिले आगामी 2026 सेप्टेम्बर 5 मा आयोजना गर्ने भनेको रेड पांडा म्याराथनको मिति परिवर्तन गरी 2026 नोभेम्बर 28 मा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको विहरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ।
1: अध्यक्ष निमा टेन्डु शेर्पा, हिमालय स्वास्थ्य र वातावरण सुभाग सोलुखुम्बु।

0: गोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सूर्य फिल्म स्टूडियो टाइम
2: स्नैपिंग एयर

0: संस्कार और संस्कृति की वो मान्यता सबने बेची सकी आजकल आत्मता यति कार्पेट नै हो विगत तीन दशकदेखिको सुमधुर साथ यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सनु होला यति कार्पेट कार्पेटको शहनशाह
1: बत्तीको तार है ख्याल गरौ
2: नेपाल विद्युत प्राप्त

0: Ubuntu FM 101.2 MHz. Ujjwal bhavishyako lagi hamro abhiyan.
1: Time check. Solu FM studio time.
2: It's 6 p.m. साँझको 6 बज्यो.
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू.
1: छ बज्यो.
2: यो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्राली को हो.
1: राष्ट्र को शान किसान.
2: अ कंप्लीट पाइपिंग सॉल्यूशंस.

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्ज्वल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Chip. Solo FM is studio time.
4: It's 7 p.m. Start the call, start button.
5: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतकुन्डा नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु

0: Sanche. Sony FM, Studio Time.
1: It's 8 p.m. रात को 8 बजे.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू.
3: पुनः प्रसारण.